इस प्रकार जी रामदास साहब गुरका गद्दी से विराजमान हुए। 1627 बिक्रमी के विच श्री अमृतसर साहब जी ने चक्रे ताई बसाया ते कायम जिथे सब संग जी हंस होए। जिस वक्त आप के अमृतसर से सतवादी जित नाते कौआ हंस वो है वो कह हंस हुए विसाखी के जोड़ मेले नु साध संग जी जिसको पिंगला जो पति आए राजे का लड़की का राज कौर का पति सी वो भी पिंगला ते कोड़े का मिट गया राजी हो गया सी। इस प्रकार साध संग जी गुरु महाराज साहब सत्य पातशाह अमृतसर साहब 52 गोत बसाए ते गुरपुरी एक केंद्र बनाया सिख पंथ के अंदर संसार के भाई उपदेश देने वास्ते परम पवित्र तीर्थों का तीर्थ राज श्री अमृतसर साहब सत्य पातशाह रचना किया। इस प्रकार श्री गुरु रामदास साहब सत्य पातशाह जी की जी महिमा है वो कहीं नहीं जाती। शब्द की कथा करनी है गुरु महाराज साहब के गुण किए कहे जान मोह मल वस्ती को काम गए केस पुछाड़े जिन्हें मोह रूपी पहलवान नू जिस मोह ने जो वशिष्ठ में जेड़ा जंक में उस काम के ताई गुरु साहब जी ने सिखा दे हिरदे जो संस्कार आए हुए काम के केस हैं गे काम काम के संस्कार रूपी केसों को पकड़ के पटकाया सिख पातशाह जी ने जिस काम ने सुनी जिस वर्गियां नू वेद का पाठ भुल गया हमन भुल गया जिस काम ने पटकाते सी अगर ऋषि मुनि ओनू केसों के पकड़ के संस्कारों को पकड़ के सरजू सचे पातशाह जी ने पटका के मारिया है पिछाड़ दिता जो धोबी पल्ले के बसन पिछाड़ता है काम गया केस पिछाड़ो क्रोध खंड प्रचंड जिस क्रोध ने प्रचंड पुछे ने खंड दिखी सारी दुनिया जदों परशुराम नू क्रोध आया अपने पिता जमदग्नि दे मारन तो संसार वाहु दे ताई इन कतल कर दिता उदू बाद प्रण कर लिया कि मेरी माता ने रेणुका ने छत ते हथना मारिया छाती ते मुंह ते पत्तां ते हुण मैं 21 बार छतरी खत्म करांगा। ये प्रण करके साहब संगी छतरियां नू 21 वारी मार के परशुराम ने उस वेले इन्हां दे लोक इस प्रकार परशुराम नू रोना पिया जिस क्रोध ने खंड खंड के टुकड़े आप जी ने कई क्रोध सुभाव पैदा करने वास्ते बाबे श्री चंद ने परखण वास्ते कहा सी महाराज अमृतसर च दर्शन करने आए ते कहन लगे महाराज दाड़ा ओहदा बड़ा लम्मा है की कारण है खजूर ने अपने हथ विच कमला विच दाड़ा पकड़ लिया बाबे श्री चंद दे चरणा वाल हथ चलाया कहन लगे चरण साफ करने वास्ते दाड़ा बढ़ाया जब बचन के बाबा श्री चंद जी उल्ट के मारा वे चरणी पह गए कहन लगे महाराज तुम तो मेरे पिता गुरु नानक साहब का चौथा स्वरूप मैं आपके चरण थे गाड़े में चढ़ा सकते इसे महाराज गरीबी नाल इस दात को प्राप्त किया है। ये श्री चंद बड़ा तपस्वी सी जेड़ा तेज सुभाव पूछना चाहता सी सर्दी ने उत्तर इस निर्माई ने दिता जिथे क्रोध करना बनता सी कि इंसानों उत्तर परखण वास्ते क्या उसे महाराज साहब जी ने उस क्रोध नु खंड खंड करता नेड़ दिता निम्रता दे सरोवर विच आप इशनान करते हैं ते श्री चंद नु भी निम्रता विच लै आंदा एडी वड्डी वडियाई गुरु रामदास साहब वो सिखां दे भी क्रोध नु जिहड़ा खंडण वाला सारी दुनिया नु सिखा है उहनू भी महाराज साहब कट दिंदे असे उतारी है सतगुरु जिन्हां दे हिरदे विच गुरु रामदास साहब बस जांदे है। क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान सो झाड़ियो जिस लोग ने मियादरी के नाल सारे की झाड़ पछोड़ की है जिसवा मित्र ने लोग आके सूर का रूप धार के हरिचंद का दाग पकना शुरू कर दिता सी उस लोग महाराज साहब जी मियादरी के नाल झाड़ दिता है उस सबे लाल की दुनी के हर सो ने बुलाई सिखा भी ने परमेश्वर नाल लुआ के महाराज ढेर पे रेंगे गुरु रामदास साहब के पास वो कई हथ में छाया कर दे करे ਪਿਰਸੀ ਚੰਦ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਚੋਹ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਰਸੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਆਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰ ਪਿਛੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮਾਨ ਜਾੜੇ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਮਾਰਾ ਆਪਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੂਤ ਜੋ ਕਾਲ ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਗਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੇ, ਪਗ ਸਾਗਰ ਤਾਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਰਿਓ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕੇ ਪਰਚਾ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸਰ ਆਦ ਪਗ ਸੱਚੋ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਸ ਰੂਪੀ ਚੌਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਯੋਗ ਭੋਗ ਸਿੰਘਿਤ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਆਦਿਕਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ। ਗੁਣ ਤੇ ਕਰੇ ਮੇਦ ਮੇਦ ਦੇ ਵੇਦ ਉਚਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੂਝਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਝਾ, ਉਹ ਮੇਦ ਮੇਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

साहब जी पढ़े कि अगे संतों को प्रचार किया उदू अगे इसे प्रकार तरीके चलदे बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए उन्हें गुरमुखा के राही एड किया अमृतसर साहब च प्रचार भी रही उदू बाब साहब सिंह जी बाबे चंदा सिंह के मगरों बाबा जस्सा सिंह जी होए जसवंत सिंह आदि गुरमुख सिख होए उन्हें तो गुरु साहब जी की यह सेवा संगरा भी अमृत नाणी के पढ़ाने की महाराज साहब ने प्राप्त देना की संगतों ने उस तो बाद बाबा हरनाम सिंह जी बेदियों के होए उन्होंने साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कथा संगतों के अंदर सेवा कर रहे थे अमृतसर साहब रह के उन्होंने तो बाबे भगवान सिंह जी महाराज साहब जी कथा करी बाबे भगवान सिंह जी तो अगे बाबा अमीर सिंह जी महापुरुख जो अमृतसर साहब तो 7 साल कथा करते रहे संगतों के जिन्हों को भरोसा है हूं बाबा करतार सिंह जी उत्थे सेवा कर रहे हैं श्री अमृतसर साहब उन्होंने तो सेवा हुई अगे संत बिशन सिंह जी मुरारे वाले ने बाबे हरनाम सिंह तो पढ़ के मुरारे में कथा की संत बाबा सुंदर सिंह जी ढिंगा वाले जो इतने भी गुरु महाराज साहब के चरणों पूजते सरगे दर्शन करते रहे हैं उन्होंने पासों अमृत बाणी की कथा करके संतों की बेहद संतों विचर के प्रचार किया जिन्होंने अपने जीवन में 10 लाख तकरीबन सिंह पंजा चरण की सेवा च होके खंडे के अमृतपान की सेवा च लगे बेअंत संतों ने बड़ो सारिया लाभ उठाया बहुत सारे काठी सिंह होए बहुत सारे ज्ञानी होए उन्होंने संत संगत जी इस प्रकार सेवा इसी कथा संत महापुरुखों ने संतों के बारे पढ़ाई फिर वाहिगुरु की आज्ञा नाल महाराज के चरणों की याद उठे उस सेवा नु संत संगत जी बेअंत सिंह ने जथेदार गुरदयाल सिंह जी जो बोपारा है 28 कथा कर रहे मगरों दियों इस प्रकार होर कई सिंह पुजारी अजय सिंह जी नारायण सिंह जी उन्होंने शरीर हम सेवा कर रहे हैं इस प्रकार होर बेअंत सिंह संतों को वरों साहे सन जो सारे इलाकों च प्रचार करते रहे उन्होंने अरदास भी यह सेवा हिस्से आई आज्ञा की महापुरुषों ने तुम ये साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा अपने सिर के संगुरा का डंडा समझना।

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज का वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहेब जी। चौपाई तुरक सुबत जै सहज सुभाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकदा मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहने ने किसी ने अग्यों शस्त्र नहीं उठाया। हो सकता वो इलाके दे बदनाम होवे जबर खां पहला भी लोगों दिया धियां भैणां चुक लिया होवे ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं की है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनू पकड़ लिया।
0: जिजनी को एक तुरंग चुढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नू बाहर लिआंदा पठान नू भी खड़ा कर लिया पिंड वालियां नू इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया भई असीं इहनू एवें नहीं लैके जा रहे इहने आह कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनू पकड़ के लैके

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज ने कहते ये कहेजे सिंह तुसी खड़े किए उ दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ये को खो लिया है इन्नी काहदी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करन ते दिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह सुना रहे हैं
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघां नूं हुक्म आसी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अख नहीं लगदे वह जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे हां पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक हां हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगागा कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे ये थोड़े जिहड़े सिंघ ने ये अपनी ही मनमर्जियां करते हैं
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी के उची उची बोल सुने तो उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारू।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतों नूं बहुत बख्शिशां कर रहे ने। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां, पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है। बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है, आपस विच विचार कर रहे हैं

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। यह तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्हों के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम।
0: इन्होंने कई बारी अपने नाल जंग कीता है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तां माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मना दे दल नू मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नू, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नू बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है आवे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। लोक ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हती को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗੈ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਨੋ

0: मैदाने जंग दे विच सूरमे अते घोड़े उन्हां दे घोड़िया सने ही सारे पहाड़िए मार दिते।
1: लोथन सो पूरन थल सारा,
0: लोथां दे नाल सारा ही जिन्ना थल सी सारा जितना मैदाने जंग सी भर गया।
1: सर्ब ग्रेसर उज लगाए,
0: सारिया पहाड़िया ने अपना बल लगा लिया।
1: परी भाज किम पग न जमाए,
0: भाजना पै गईया पैर जमण नहीं दिते, यही गुणा का प्रताप है।
1: फेर तरंग सपाह टावे,
0: हो इस प्रकार दे नाल घोड़े दे उत्ते चढ़ के राजे अपने सपाहियां नूं कहिंदे पिछे हो के लड़ो।
1: मिर्ग सम भाजे किम अटकावे,
0: पहाड़ियां दी फौज मिर्गां दी तरह जदों पिछे नूं दौड़ी शेरां तों डरदी होई, कौन उन्हां नूं वापस मोड़ सकदा है।
1: बजी बंब रणजीत नगारे,
0: उस वक्त रणजीत नगारा बहुत जोर दी बजया।
1: भाजे शस्त्रन केतक मारे,
0: भज गए शत्रु किन्ने क मार ही दिते।
1: रुंड मुंड होए पए हजारा,
0: उस वक्त उस स्थान

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्यागे, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं कि गुरु घर नूं नहीं मनदे ऐवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पौलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारिआं नाल ही वरतणा, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: दोहेरा सबा सर्ब कवियन बिकै इस बिद भयो संवाद।
1: पिछे भी जो बीते हुए प्रसंग सारे लंघ चुके ने उन्हां विच कवियां दे नाल गुरां ने संवाद कीता बचन बिलास होए इस तरह सारे बचन बिलास अगे भी हो रहे हन।
0: धन धन सब ही कहे हृदय अधिक अहलाद।
1: सारे जने कहने धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज धन हो सच्चे पातशाह। सारयां दे मनां दे अंदर बड़ा ही आनंद आया इन्हां बचनां नूं सुन के कि कलयुग दे विच किन्ना महात्म है नाम दा।
0: जो पई उठे प्रभु मंदर को गए।
1: महाराज फिर उठे संगत विचों उठ के अपने महलां वल गए।
0: नाना रस आहार अच लई
1: नाना प्रकार दे भोजन छाके
0: उन पर्यंक पर करियो आराम।
1: फिर सुंदर सोहने पलंग दे उत्ते विश्राम कीता।
0: इम संवाद कवियन अब्राम।
1: इस तरह बड़ा सुंदर संवाद कवियां दा होया है।
0: देश विदेशन मैं कवि गुनी आवे चले सो कीरत सुनी।
1: देशां विदेशां दे विच गुनी कवि जड़े ने जिन्हां विच गुण बहुत है पर कदर नहीं है किते। जदों पता लगता है कि कलगीधर महाराज कवियां दी बहुत कदर करदे ने तां ओह सारे एकत्र हो के महाराज जी दे पास आउंदे हन।
0: दर्ब करोड़ों लग बख्शंते।
1: करोड़ां रुपईयां तक थोड़े बहुत रुपईये नहीं दिंदे कवियां नूं। 50,000 तों घट तां दित्ता ही नहीं किसे नूं। लख 2 लख बहुत कुछ दिंदे ने। क्यों ये भी थोड़ा करोड़ भी उन्हां वास्ते क्योंकि तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा। चाहुण तां धरती सारी दा राज दे देण सो चाहुण तां स्वर्गां दा राज दे देण महाराज लई कोई वड्डी गल नहीं है।
0: युग लोगन के सुखन लभंते।
1: जिहड़े जीव चाहुंदे ने कवि लोग भी चाहुंदे ने सानू दोनों लोगों का सुख मिले।
0: अमृत राय कवि एक आयो।
1: हुण ये चाहते जो भी ने मिलता है इत्थे इन्हां विच हुण पहला कवि है अमृत राय ये सतगुरु महाराज के पास आया।
0: कर कीरत को कवित अलायो।
1: इसने आके जदों महाराज के दर नूं तकिया दरबार देखिया सारी संगत दर्शन कीते गुरां दी महिमा जानी तां इह कवि ने एक कविता रची है।
0: मिलियो प्रथम कीन परणाम।
1: पहला आके महाराज दसवें पातशाह नूं मत्था टेकिया है।
0: बौर सुनाए सुजस अब्राम।
1: फिर बड़ा अब्राम हुंदा सुंदर सोहना जस कीता है।
0: कबित जाही और जाऊं अत आदर ताते पाऊं।
1: हुण कबित कवि जी ने रचिया अमृत राय ने 52 कवियां विचों जिथे भी जांदा हां हे सच्चे पातशाह